जादू का तमाशा है तो जिमें जादू के तमाशे चों कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा उसी तरह इस जगत विचों भी तैन कोई चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। हे भाई बेअर्थ बहस करन लई बेदा कितेबां दे हवाले दे के एवें फजूल गल्लां करन नाल दिल दा सहम दूर नहीं हुंदा। तुसी अपने मन नूं पलक भर भी टिका लो तां तुहानूं सभना विच रब वसदा दिस पएगा। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त नाहे। बेसमझ लोग दूसरे धर्मां दीआं पुस्तकां पढ़ पढ़ के कि इन्हां विच जो लिखिया है वह झूठ है खुश हो के बहस कर रहे हैं, पर सदा थिर रहन वाला परमात्मा सबना जीआं विच वस रहा है। ना तो वह सतमें आसमान ते बैठा है ते ना ही कृष्ण की मूर्ति विच है, वह तो सर्व व्यापक है। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन भूत कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। सतमें आसमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी, सो सदा उस दी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, ओ हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का ओ करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिस नूं वाहिगुरू समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।

0: ओके, 1 2 3। हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों। प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरजीत सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़। दोस्तों, सिक्ख्या ते रुजगार दे विच तुहानू पता है कि असी वक्-वक् जो मुद्दे ने जुड़े हुए विषय दे नाल, चाहे वह काउंसलिंग होए, चाहे वह रुजगार नाल जुड़ी हुई कोई गल होवे, उहदे उत्ते आपां चर्चा करदे आ, सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां करदे आ, एजुकेशन दे उत्ते गल करदे आ। तो इस सारे प्रक्रिया दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय है वह आंदा है पेरेंटिंग, जाने कि बच्चे का पालन पोषण। सो अज इस महत्वपूर्ण विषय दे उत्ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़े ने पैनलिस्ट डॉक्टर भावना गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, डॉक्टर भावना गुप्ता जी को चेयरपर्सन हैं टर्न अराउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जलंधर, तो इस तो इलावा वो बतौर डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो काउंसलिंग दे विच बहुत सरगर्म ने, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो दे रहे ने, तो स्टूडेंट्स नू करियर गाइडेंस दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा जिहड़ा समां जिहड़ा लगता है, बहुत योगदान है उन्हां दा। ते विशेष तौर पर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो मापिया किमें जोड़ा गाइड करते हैं, ये अच्छा आप जाएंगे उन्होंने को। तो डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो जो सवाल ये आता है मन कि ये पेरेंटिंग की है, पालन पोषण की है, इनू आप किमें डिफाइन करते हैं?
1: जी, पेरेंटिंग सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए है कि सब तो कॉम्प्लिकेटेड जॉब और फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग।
0: जी
1: यदा कोई निर्धारित समा नहीं है, जब तक
0: जी
1: तुसी पेरेंट्स हो पेरेंटिंग चलती रहती है।
0: जी जी
1: एक बच्चे नू पैदा करना, उस दियां जरूरतां पूरियां करना, और जिस तरह आपां कहने कि सारे इदां ही पलदे है,
0: जी जी
1: ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग इस तो वध के है कुछ।
0: जी
1: तुसी एक बच्चे नू वो बनाना जो तुसी बनाना चाहते हो, उसनू टाइम देना पैंदा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: उहदे लई जो एफर्ट्स लगदियां है वो सब इस पेरेंटिंग दे विच आ जांदा है।
0: जी। तो ये अपने आप दे विच ही उम्र भर चलण वाला
1: हाँ
0: मापिया लई
1: जी,
0: जिहड़ा काम है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ते एक दिन वाला काम नहीं हैगा जी।
1: हाँ जी
0: अज
1: हाँ जी
0: इहदे उत्ते गल हो गई ते खत्म हो गई
1: हाँ जी
0: ये तो जी, पर यह मतलब कि ये लिए तो फिर किमें आप इन्हों डिफाइन करा, हर बंदे का अपना सुभाअ है,
1: हाँ जी
0: तो आपो अपने रूल, आपो अपने जड़े तरीके अपने बच्चों पालन पोषण उन्होंने करते हैं,
1: हाँ जी
0: तो कि चीज़ा जड़िया ने वो सब उभर के आदि ने।

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वारा।

0: भी उन्होंने कर सकता है उठे जो बंदा उठे।
1: एक हैरानी वाली गल जी सामने आ रही है, स्ट्रेस जी मैनेजमेंट है, फेलियर से भी नहीं है, सक्सेस से भी अजकल स्ट्रेस हो रहा है।
0: अच्छा
1: बच्चे
0: जी,
1: जड़े फेल, मतलब फेल मैं कहूँगा, नाकामयाब हो जाते हैं किसी कंपिटेटिव एग्जाम च, उन्होंने खबर आदि
0: हाँ
1: ने
0: जी, हाँ जी जी
1: कोई किसी फील्ड से चला जाता, मान लो डॉक्टरी कर लेंदा है या किसी
0: जी
1: इंजीनियरिंग कर लेंदा है, उत्थे कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, या फिर उत्थे तानू प्रॉपर तुसी अपने करियर च आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुसी पढ़ोगे अजकल कॉलेजेस दे विच भी सुसाइड दे जड़े केसेस ने काफी जड़े है
0: अरे
1: बाहर सुनने नू आ रहे ने।
0: अरे, हाँ जी, हाँ जी
1: स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई कोई टेक्निक नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुसी कोई टेक्निक तुसी उदी स्टडी कर लो तो उस वादे स्ट्रेस नू जड़ा मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस तुसी अपने ही तानू ही काबू करना है बेसिकली।
0: सेल्फ काउंसलिंग भी
1: सेल्फ
0: करनी है जी।
1: काउंसलिंग तुसी कुछ अपने आप नू इस तरह किसी चीज़ से रुझा लो, जिगह पर कहते हैं खेड खेडनी बहुत जरूरी होती है,
0: हाँ जी, हाँ जी
1: खेड खेडना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ताड़ा
0: बिल्कुल,
1: कोई लाइफ से इंटरेस्ट है, तानू डांसिंग का शौक है, तानू सिंगिंग का शौक है,
0: वो भी बिल्कुल
1: तानू
0: सही,
1: जॉगिंग का शौक है,
0: बिल्कुल सही है।
1: अद्धा पौना घंटा लाइफ के बीच अपने आफ्टर ड्यूटी आवर्स या आफ्टर ताड़े जेडे स्टडी आवर्स हैं, तुसी अद्धा पौना घंटा अपने इंटरेस्ट में जरूर परस्यू करो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी,
1: तुसी
0: हाँ
1: किसी
0: जी
1: खेडने जाओ, तुसी डांस करो, बंद कमरे से नचो, बंद
0: बिल्कुल
1: कमरे से गाने गाओ,
0: जी,
1: सारे जेडे ताड़े स्ट्रेस है तुसी देखो कि अद्धे पौने घंटे अपने आप ही सारे डिजोल्व हो जाएंगे, एंड तुसी अपने अगले दिन की तैयारी करनी जड़ी है
0: बिल्कुल
1: शुरू कर
0: बिल्कुल
1: दोगे,
0: बिल्कुल
1: पुराना दिन भुल के नवे दिन की तैयारी करोगे। सो बेसिकली जो भी कोई बच्चे को स्ट्रेस आता है या कोई उन्होंने लगता है कि मैं कुछ अपने ना गलत करने बारे सोचता है, एक बार जरूर अपने पेरेंट्स का, अपने भैन भरावान का, अपने
0: बिल्कुल
1: परिवार का ध्यान जरूर करे कि उन्होंने इन्नी मेहनत बाद 15-20 साल ला के मैनू इतने तक
0: एक किता है
1: पहुंचाया
0: सारा
1: है,
0: हो गया
1: तो
0: है
1: मैं
0: उनका
1: अपनी एक
0: जी।
1: सेकेंड की जड़ी भूल ना वो सारा कुछ मिटावा ना, उन्होंने व्हाइट वॉश ना करा।
0: बड़ी
1: जे इस
0: बड़ी
1: तरह
0: बात है,
1: अपने
0: बिल्कुल
1: पेरेंट्स का ध्यान, पेरेंट्स नाल प्यार होगा, अपनी फैमिली नाल प्यार होगा, कभी भी इस तरह का स्टेप जरा नहीं ले सकते।
0: नहीं नहीं लेना चाहिए जी, बिल्कुल जी, ये तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए है। और ये मैनू लगता है कि स्कूल के विचों शुरू तो ही पेरेंट्स नू भी एक माहौल दे विच होनी चाहिए है, ताकि वो बंदा जिहड़ा कई तो बंदे काफ़ी नैगेटिव चले जाते हैं नॉर्मली, जिहड़ा ओवरऑल एक चलो बैलेंस्ड लोग बनाने कामयाब हो जाते हैं। एक बायस, जेंडर बायस जिहड़ा है वो आप जो गल करिए, उन्होंने पहले ही कहता जाता है कि हाँ यू आर गर्ल, तुसी सिर्फ तुहाडे वास्ते हैगे स्पैसिफिक, तुसी इस तो बुलावा नहीं पुछना। ये एक रुझान जिहड़ा इहदे ते तुहानूं कदे लग्गा कि किस किस तरह का रुझान है
1: शमी जी आपां ना हुण पुरानी गल्लां कर रहे हैं
0: जी?
1: अजकल दा, क्योंकि वही पुरानी गल्लां अपने ना माइंड च हजे भी इनहेरिट हैगियां
0: है कितने
1: कि गर्ल्स नू मौका नहीं मिलता या गर्ल्स अग्गे नहीं आंदियां। मैं पहला भी कहा सी तुहानू ओलंपिक्स की आपां गल
0: हाँ जी,
1: करिए,
0: हाँ जी
1: इस बारी
0: बिल्कुल,
1: ओलंपिक्स दे विच पीवी सिंधु, साक्षी
0: हाँ
1: मलिक, दीपा
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कर्माकर, मैं तुहानू एक गल दसदा, शायद इन्नी प्रेज इन्नी रेकोगनीशन किसी मेल एथलीट नू ना मिलती जिन्नी प्रेज जिन्नी
0: उन्होंने
1: रेकोगनीशन
0: मिलती,
1: इन्ना फीमेल एथलीट्स नू मिलिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: लोकी बोलते बहुत कुछ होंगे, बहुत कोई पुरानी मेंटेलिटी दिए कुछ बयान आते होंगे, बट मैनू यह लग रहा है कि अपना देश जरा बदल रहा है हूँ,
0: चेंजेस आ रहे हैं
1: चेंजेस
0: इसके,
1: बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आ रही ने।
0: बिल्कुल
1: हुण कोई सक्सेस जे किसी कुड़ी नू मिलता हैगा, आई गेस सारे ही लोगों नू उन्नी ही खुशी होंगी है जिवें
0: वेलकम
1: उन्हों की
0: करते
1: कोई
0: हैं
1: उन्हों
0: बिल्कुल
1: की भैन उन्हों की कोई घर की परिवार की मैंबर ने कि जिवें वो खुश हुई। मैं आप मैच वेखिया से पीवी सिंधु वाला,
0: जी, हाँ जी बिल्कुल जी,
1: साढ़े घर चो कोई बैडमिंटन नहीं वेखता, कोई खेडता नहीं हैगा,
0: ठीक है जी,
1: सारे परिवार ने उत्थे घट्टो घट 20-25 जन ने टीवी के अगे रह के मैच वेख्या, तो जो उन्हें सेमीफाइनल जितया तुम यकीन नहीं मनोगे इन्ना असी नचे, मेरी
0: सही है, सही
1: आई
0: गल
1: एस
0: है,
1: सी सिलेक्शन होने के इन्ना नहीं लोग नचे हो गए जिन्ना उत्थे नचे,
0: क्या
1: ये
0: पता
1: पूरे
0: वाकई
1: पूरे बाजार के
0: वो
1: बीच
0: तो
1: इस
0: देश
1: तरह
0: में
1: का
0: रहने,
1: माहौल सेगा।
0: सही गल है ना,
1: ते कहने का भाव यही है कि अजकल का जो सा सोसाइटी है वो बदल रही है, होपफुली अगर होर पॉजिटिव चेंजेस आनी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: बट जे किसी कुड़ी नू रिकॉग्निशन मिलती है अपनी मेहनत ना उन्हें रिकॉग्निशन हासिल की है, साक्षी मलिक हरियाणा तो
0: हाँ
1: आपा
0: जी,
1: कहने
0: हाँ
1: लोएस्ट
0: बिल्कुल
1: लोएस्ट
0: बिल्कुल,
1: एक्सरेशो हैगी हरियाणा
0: हाँ
1: दे
0: जी, हाँ
1: विच,
0: जी
1: हरियाणा एंड नॉर्दर्न इंडिया दे विच, बट स्टिल देखो कि नहीं उन्हां नू रिकॉग्निशन मिली।
0: यानी एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग आप
1: एब्सोल्युटली
0: कही, इस सिल्वर लाइनिंग भी हुण जिहड़ी है धुप च तब्दील होंदी जा रही है, ते क्लाउड जिहड़े है उन्होंने लगभग बस्ट कर ही लिया आपां, क्लाउड बस्टर हो चुके हैं,
1: इन्हें अब
0: उजाला आ
1: तुसी
0: रहा है।
1: सिविल सर्विसेज वेख लो, कोई तुसी मेडिकल दे कोई एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आंदा सब से कुड़ियां अगे आ रही ने, अब हमने
0: जी
1: बोर्ड दे रिजल्ट आए उदों कुड़ियां सब तो अगे सी,
0: जी जी जी
1: कुड़ियां रिकॉग्निशन हासिल कर रही ने, मेहनत कर रही ने, असी जस्ट जिवें अपने बच्चे वांग आप कुड़ी मुंडे लिए ना आप बच्चे ना
0: हाँ जी, हाँ
1: लिए,
0: जी
1: जिवें
0: बिल्कुल,
1: बच्चों इको इको वर्ग आप सपोर्ट देना, इको

0: तेनू उम्र मेरी लग जावे, मेरी ये सरदारनी ए, तेनू उम्र मेरी लग जावे।
1: वाह जी,

सनम तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ, मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ।

0: नौजवान है वो इतना ज्यादा एक्टिवली या फिर इमोशनली किसे किसे भी कलाकार रहा किसी भी नाल अटैच्ड होन,
1: हाँ जी
0: क्योंकि एक तो बेसिकली उन्हें भी जो उम्र है इस टाइम टाइम से जो एक नौजवान पीढ़ी है साड़ी, उन्होंने सब तो ज्यादा उन्हें लिए प्रायोरिटी उन्हें दा फ्यूचर होना चाहिए है।
1: बिल्कुल
0: जो
1: जी
0: लोग अपना फ्यूचर बना के ऑलरेडी सेट हो चुके ने, जिदा के साडे तुसी कह रहे हो कि कलाकार हैं या जो भी हैगे हैं अपने
1: हाँ जी
0: सेलिब्रिटीज हैं या व्हाटएवर, तां ओदा एक तरह नाल अपना फ्यूचर करियर सब कुछ बना के सेट नहीं ऑलरेडी, उना ओना दे पिछे अपना टाइम वेस्ट करन तो अच्छा है ओना दे पिछे अपने अपने रिलेशंस अपने फ्रेंड्स नाल लड़ाई झगड़े करके झगड़े करके मतलब
1: हाँ
0: दूरियां
1: जी
0: बना नालो अच्छा है कि तुसी अपने फ्यूचर दा कुछ कर लो।
1: बिल्कुल
0: जिन्ना देर तुसी एक सोशल मीडिया अकाउंट दे ऊपर किसी कलाकार दा या किसी भी सेलिब्रिटी दा कुछ भी रिव्यू पढ़ रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तां वो ठीक है तुसी का एंटरटेनमेंट पर्पस दे लिए देखो उन्हें उत्थे ही छड़ दो,
1: बिल्कुल जी
0: डोंट टेक इट पर्सनली, उसनु
1: बिल्कुल
0: पर्सनली ना लो, उसनु इमोशनली उस दे नाल अटैच होने की कोई लोड़ नहीं है, उसनु तुसी अपने नाल मतलब उसनु सिर्फ तुसी एक एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स यूज करो, नॉट फॉर तुहाडे जो इमोशंस है उन्हें उन्हां दे नाल लिंक ना करो कदे भी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तुहाडे जो इमोशंस है वो तुहाडी फैमिलीज लई होने चाहिए है, तुहाडे करियर लई होने चाहिए है, तुहानू जो तुहाडा प्राइम मेन फोकस होना चाहिए वो तुहाडा करियर होना चाहिए है।
1: बिल्कुल
0: अपने
1: जी
0: करियर दा एक गोल एक एम सेट करो, कोई अच्छी पोजीशन ते पहुंचो, कुछ ऐसा करो जिदे नाल तुसी अपनी सोसाइटी नू प्रोग्रेस कर सको अपनी फैमिलीज नू प्रोग्रेस च लेके आ सको।
1: हाँ जी मैडम तुसी बहुत वधिया विचार मीडिया दे खेतर संबंधी पेश कीते, नौजवानों ने एक वधिया दिशा दित्ती, असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। ते अखीर दे विच मैं चाहांगा भी जे कोई होर तुसी गल खास गल इस खेत्र बारे करनी चाहो तां जरूर सांझी करो 1 मिनट दे विच।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत धन्नवाद करती हाँ जी दुआबा रेडियो दा कि तुहानू तुसी मैनू मौका दिता तुहाडे नाल जुड़न दा और नौजवानां तक अपने व्यूज पहुंचाण दा,
1: हाँ जी
0: ते मेरा जो नौजवान पीढ़ी है साडी उहनां दे लई यही एक लाइक एक मैं तो उहनां नू सिर्फ एक यही चीज दसना चाहांगी कि तुहानू सब तो पहला उहनां लई अपना एम और अपना फ्यूचर सिक्योर करना प्राइम फोकस होना चाहिदा है। सब तो पहला तुसी अपना फ्यूचर सेट करो, उस तो बाद कोई भी नेक्स्ट जो स्टेप है तुहाडे लई जरूरी होएगा। सब तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुहानू अपने फ्यूचर नू अपने करियर नू ही देनी चाहीदी है।
1: हाँ जी
0: धन्यवाद जी।
1: बिल्कुल ये तो हैगा ही है जी। मैडम एक बार फिर तुहाडा तो बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, ते तुसी साडे नाल विचार सांझे किते, बढ़िया कीमती गल्लां कीतियां ने। मैं समझदा जिहड़े साडे स्रोते ने वो इन्हां गल्लां नूं गंभीरता नाल इन्हां बारे सोचणगे विचारणगे ते अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणगे, ते मीडिया दे खेत्र नूं अपना के इस खेत्र दे विच अपना भविख संवारन लई जतन करनगे। ते मैं समझदा जिहड़ा मीडिया दा खेत्र है इह अज दी नौजवान पीढ़ी दे लई बहुत ही वधिया खेत्र है, जिथे वो अपना भविख बड़े वधिया पासे लैके जा सकते हैं। तो नाल नाल जिहड़ी है इस खेत्र दे विच सानू जिहड़ी हैगी पब्लिक दे विच एक नवीं पहचान भी मिलती है। मैडम साहिबाना जी एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। हुण वेला हो
0: धन्यवाद
1: गया है प्रोग्राम समाप्त करन दा, अगली बार फिर मिलांगे। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद दुआबा रेडियो उत्ते प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच।